0: मार मैं पाचो
1: इटी यूनियो और रेडियो
2: वो ना पाले डाटिया को नियंत्रित